नमस्कार। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 दे वैसाख महीने दी 18 तारीख, 23वीं सन 2026 दे मई महीने दी 8 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 40 सेकंड हो रहे ने ते साडी अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने। सभा दी इस खूबसूरत शुरुआत दे विच असी अपने सारे सुनन वालियां दा निघा स्वागत करदे हां।

एक बजे ही इंजॉय करोगे मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम। 1:40 ते तुसी सुनोगे पंजाबी खबरां। मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम चलदा रहेगा 2 बजे तक, ते 2 बजे तुहाडे लई पेश होएगा दिल अज शायर है प्रोग्राम। तीन बजे थोड़ी सेहत के नाल जुड़िया गल्लां बातां होणगियां खास डॉक्टर के नाल, प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर दे राही। 4 बजे इंजॉय करोगे प्रोग्राम हैलो जलंधर। शाम 5 बजे युवा दोस्त अपना प्रोग्राम पेश करेंगे युवानी। शाम 6 बजे जिंदगी खास जिंदगी की है जिंदगी, इस हफ्ते गलबात होएगी लव यू जिंदगी प्रोग्राम दे विच। 6:20 ते तुसी सुनोगे प्रदेशिक खबरां। शाम 7 बजे सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस। 7:02 ते बॉलीवुड पॉलीवुड दे बहुत सारे किस्से कहानियां वक्रियां वक्रियां जानकारियां सुनोगे फिल्मी दुनिया प्रोग्राम 7:02 ते। रात 8 बजे सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस। 8:02 ते पब्लिक मंच प्रोग्राम। रात 9 बजे सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस। 9:02 ते थोड़िया हिंदी फिल्मी गीतां दीयां फरमाइशां पूरियां होणगियां प्रोग्राम दिल चाहता है दे राही। रात 10 बजे इंजॉय करोगे शामी गजल प्रोग्राम। 10:30 बजे एक प्यार का नगमा है। दोस्तों इसे रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले साडे प्रोग्रामां दा वेरवा ते प्रसारण समा FM 102.7 MHz से तुसी सुन रहे हो FM रेनबो चैनल। 6:05 हो रहे ने, आओ सर्विंग कर दें भक्ति संगीत दा प्रोग्राम वंदना।

जो मिल गया उसका शुक्र कर, जो नहीं मिलया उसका सब्र कर। पैसा, शरीर, कारोबार, सब कुछ इतने ही रह जाना है। और जेकर फिक्र करनी भी है, जेकर किसी गल के बारे सोचना भी है, तो अपने उस कर्मा के बारे सोचना चाहिए जो असं कर रहे हैं। हमेशा क्यों कहते हैं कि हमेशा चंगे कर्म करो, क्यों कहते हैं कि हमेशा दूसरे का चंगा सोचो, दूसरे का चंगा करो, क्योंकि साडे कर्म होंगे ने जो इंसान नूं तां इत्थे याद रखाउंदे ने, पर साडे कीते कम्मां दा, साडे कीते कर्मां दा, साडी बोली दा सारा हिसाब किताब उस परमात्मा अगे हुंदा है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

एफ एम मैन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो जी एफ एम रेनबो दे उत्ते तुसी इंजॉय कर रहे हो जी गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम अपनी आंटी अंजलि दे नाल। और मैं क्या जी जदों असीं रोड ते चलदे आ ना बहुत सारे सानू दिमाग दे विच सानू नियम पता हुंदे ने, दिमाग दे विच तां साडियां गल्लां चलदियां हुंदियां ने कि असीं रोड ते निकले आ अपना ख्याल रखना दूसरियां दा ख्याल रखना। पर देखो कई वारी काली इन्नी हुंदी है किसे थां ते पहुंचण दी काली इन्नी ज़्यादा हुंदी है कि उन्हां रूल्स नूं तां असीं तोड़ दिंदे आ, दूसरे दी वी जिहड़ा है उसदा वी ख्याल करना असीं भुल जांदे।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2

FMBand 102.7 MHz से 103.6 MHz तुसे सुन रहे हो FM रेबो चैनल और मैं हाजी थोड़ी अपनी आशी अंजलि 8:40 हो गए ने सवेर दी हुण वेला हो गया जी प्रोग्राम थोड़े अपने अड्डी टप्पा दा सो आओ जी एक म्यूजिकल सफर ते निकलते हैं पंजाबी बीट सॉन्ग्स नू एंजॉय करते हैं और 9 बजे तक ये सफर चलता रहना है।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

मैं कह रही प्रोग्राम शुरू हो गया है जी। 9:11 हो रहे ने और प्रोग्राम दे विच गलबात अज खास होनी है जी रोड सेफ्टी नू लैके कि आखिरकार जदों असीं घरां तों निकलदे आ रोड दे उत्ते निकलदे आ तां साडी सोच साडा दिमाग साडा विचार जिहड़े साडे विचार ने की हुंदे ने असीं की सोच के घर तों निकलदे आ जदों असीं गड्डी टू व्हीलर हो गया चकते हैं या फिर असी चकते मतलब उदा नहीं मुंडिया तो नहीं चकना मतलब कि उसनों स्टार्ट करते हैं घरों निकलते हैं तो या फिर फोर व्हीलर हो गया थ्री व्हीलर हो गया और जो गड्डी तो असं बैठते हैं तो की सोच होंगी है। बहुत एक आम जहा विचार ये होंगे कि असी सुरक्षित जाना घरों निकलना सुरक्षित ही घर वापस आना पर उस दौरान बहुत ही आम जे सड़की नियम ने जिन्हों का असी पालन करते हुए रोड के उत्ते निकल सकते हैं। सब तो पहला तो ये गल है कि जो कहें उम्र हद सब तो उम्र तो पहला सानू कोई चीज़ मिल जाए तो शायद उस चीज़ की असी कदर करना भूल जाते हैं और यही चीज़ यही है कि अजकल असी ये देखिए कि पेरेंट्स जड़े ने पेरेंट्स ही ओबियसली सवाल करांगे कि पेरेंट्स जड़े ने ना स्कूल जाने वाले बच्चे ने उन्होंने बाइक्स मोटरसाइकिल एक्टिवा कुछ भी हो गया ये सब उन्होंने टू व्हीलर्स लैके दे देंगे ने स्कूल कॉलेज स्कूल के जाते हैं कॉलेजेस के चलो मनो उन्होंने एज होंगी है पर स्कूल के हले छोटे छोटे तुम्हें देखा होगा रोड्स के उत्ते 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे होंगे ने या उस तो भी घट क्लासिस के बच्चे होंगे ने एक्टिवा के उत्ते आप तो जा रहे होंगे ने पर नाल दी नाल उन्होंने वालों भैन भरावों को भी पिछे बिठाया होंगे और स्कूल्स तो छुट्टी के टाइम के उत्ते जो बच्चे निकलते हैं ना उन्होंने तो शायद डर नहीं लगता पर देखने वाले जरूर डर जाते हैं कि इन्नी छोटी उम्र के पिछे ये टू व्हीलर सामभ रहे हैं रोड के उत्ते चलन गए तो अपनी जान भी खतरे के पागे और दूसरों भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अजिहे दे विच पेरेंट्स के लिए एक ही गल एक ही सलाह यही होंगी है कि उम्र तो पहला उन्होंने ये वहीकल्स जड़े ने ना ना दिते जान उम्र होने के उत्ते सब तो पहला तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करन लाइसेंस के लिए एक तो चलो पहला बनता है लाइसेंस और बाद विच प्रॉपर टेस्ट के नाल जदों उन्होंने लाइसेंस मिलता अपने आप उस टेस्ट के विच पता लग जाता कि वह किस काबिल ने अगर उन्होंने लाइसेंस मिलना चाहिए तो किस तरह उन्होंने काबिलियत के आधार के उत्ते उन्होंने लाइसेंस मिलेगा जेकर उन्होंने लाइसेंस देने वाले जो अथॉरिटीज ने उन्होंने लगे कि हले बच्चा इन्ना ज़्यादा ट्रेन नहीं है टू व्हीलर सामभन के लिए या फिर होर वहीकल सामभन के लिए तो ओबियसली उसनों होर ट्रेनिंग देने दे लिए कहेंगे या फिर दोबारा तो उसनों उस लाइसेंस अप्लाई करने दे लिए कहेंगे। उस टाइम के उत्ते पेरेंट्स नू समझना चाहिए कि भाई तुसी समझो और तुसी ये ख्याल करो कि बच्चे नू उम्र तो पहला ये वहीकल जिहड़े ने ना दिते जाण और उस तो इलावा जेकर तुसी रोड ते निकलदे हो तो आम जिहड़े सड़की नियम ने उन्हां दा पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब तो पहला तो ये कि तुसी सड़कां ते निकलदे आ तो हैलमेट सीट बैल्ट जड़ी जरूर पाउणी है दोपहिया वाहन चलाउंदे हो तो हमेशा जड़ी है तुसी ISI मार्क वाले हैलमेट पाने बहुत ज़्यादा जरूरी ने कार ड्राइव करदे हो तो सीट बैल्ट लगानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी तरह का नशा

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FMN 102.7 MHz, 103.6 MHz प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो तुसी, दिल अपना पंजाबी, अपनी आरजे अंजलि दे नाल।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

एंजॉय करो जी 102.7 एफएम रेनबो दे दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो गया है पंजाबी तड़का। पंजाबी तड़का विच मैं निवेदिता रहांगी तुहाडे नाल। ते दोस्तों तुसी की करना है जी, जिवें कि तुसी जानदे हो, तुसी करना है सानू नंबर डायल जी, क्योंकि यह है फोन इन प्रोग्राम ते तुहाडे फोनां दा सानू रहिंदा है बेसब्री दे नाल इंतजार। सो तुसी डायल करना जी 0181 243 1174।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय

0: नए मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

इंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है होम स्वीट होम। सो तुहाडे घर नूं बहुत सोहणा बनाउण दी असीं कोशिश करांगे, तुहाडी सेहत नूं बिल्कुल तुहाडी सेहत नूं असीं तुहानूं सेहतयाब करन दी कोशिश करांगे। तुहाडे आले दुआले तुहाडे बच्चे तुहाडे पैट्स सब दी गल करांगे प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच। बस तुसीं बने रहना इसे तरह ही मेरे नाल, जाना किते भी नहीं है। हाँ, टिप्स ट्रिक्स नोट करन दे लई तुसीं उठ के जा सकदे हो, कॉपी पेन लिया सकदे हो, ता कि जड़ी असी जानकारियां देईए वह कितने मिस ना हो जाए। सो तुसी फटाफट कॉपी पेन चुके लाओ ते मैं प्ले करन जा रही हूँ तुहाडे लई प्यारा जिहा गीत। वापिस आओगे ते फिर जानकारियां का सिलसिला असी शुरू करांगे।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है।

डाल दी है। ते प्रोग्राम होम स्वीट होम इसी तरह ही चलता रहेगा जी। तुसी जाना किते भी नहीं है, बने रहना है मेरे नाल, क्योंकि मैं प्ले करन जा रही हूँ थोड़े लिए बहुत ही सोहना गीत अमृत मान की आवाज़ दे विच, यस दे नाल जसमीन अख्तर भी। इंजॉय करो, वापस आओ, क्योंकि जिहड़ा गल्लां बातां दा जानकारियां दा सिलसिला ना अजे भी जारी है।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम। तो दोस्तों होम स्वीट होम दे विच असी बहुत सारियां गल्लां करते हैं क्योंकि साढ़े कोल बहुत कुछ होंदा है गल्लां करन दे लई। ते हुण क्योंकि असी गर्मी दे जिक्र कर रहे सी कि गर्मी आने वाली है ते असी किद्दां गर्मी दे नाल दो हथ करने हैं किद्दां असी तैयार बर तैयार रहना। ते हुण मैं तुहानू किचन वल लैके चलदी हाँ जी। किचन वल मतलब रेसिपी की गल करते हैं तो रेसिपी अज असी जो डिस्कस करन जा रहे हैं वह है कोल्ड सैंडविच। क्योंकि गर्मियां दे विच ना हल्का हल्का खाण नूं दिल करता हैवी खाण नूं दिल नहीं करता हुंदा। ते खास करके जदों बच्चों के टिफिन रेडी करने हुंदे है तो सानूं लगता है कि यार की बना के दईए क्योंकि बच्चों ने टिफिन 2-3 घंटे बाद खोलना है तो उन्होंने थोड़ा फ्रैश फ्रैश भी लगे और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हैवी भी नहीं दे सकते। सो कोल्ड सैंडविच है जिहड़ा बहुत लाइट है न्यूट्रिशियस भी है ये तुसी अपने बच्चों को टिफिन च भी दे सकते हो जेकर तुसी घर भी ब्रेकफास्ट विच लेना चाहते हो या स्नैक्स विच लेना चाहते हो तो बहुत ही वधिया है। सो कोल्ड सैंडविच बनाना किद्दां है ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈਣੇ ਆ 2 ਸਲਾਈਸ ਬ੍ਰੈਡ ਲਓ ਔਰ ਦਹੀਂ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਲੈਣਾ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਗਾਜਰ ਲੈ ਲਓ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਰਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 1 ਛੋਟਾ

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत

0: तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, किन्नी गहराई है ना बोलां विच। दोस्तों असीं सारे ही इस दुनिया दे मुसाफिर हाँ, आउंदे हाँ अपना किरदार निभाउंदे हाँ ते फिर अगले पड़ा दे वल चले जाने हाँ। पर इस जगत दी रीत है कि इत्थे मुहब्बत दे रंग कदे भी फिक्के नहीं पैंदे। जदों असीं 80 दे दहाके वल वधदे हाँ तां संगीत विच इक वक्खरी ही मासूमियत नज़र आउंदी है, जिथे दुनिया दी भीड़ विच भी दो दिल इक दूजे नूं लभ ही लैंदे ने। ते आओ सुणदे हाँ 80 दे दहाके दा इक होर लाजवाब गीत।
1: एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे, जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है यह भी तो पता नहीं चलता, तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। सचमुच ये संसार सानू हैरान करन दा कोई मौका नहीं छड़ता, कदे धुप है ते कदे छां। पर जदो कोई साथी हाथ फड़ के चलन वाला मिल जावे तां इह जहान स्वर्ग वर्गा लगन लग पैंदा। ते दुनिया दीआं सारीआं खुशियां सिर्फ एक दूजे दे साथ विच ही मिल जांदीआं ने। प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो मिट्टी मेलेडीज़, तो मिट्टी मेलेडीज़ के अगला गीत इंजॉय करने तो पहला एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी मीठी मेलेडीज। दोस्तों इस संसार की एक अजीब रीत है, इतने कुछ भी स्थिर नहीं है। वक्त बदलता है, मौसम बदलते ने, तो इंसान भी। पर जो चीज़ स्थिवी रहती है, जो चीज़ हमेशा रहती है, वो है मुहब्बत। कहते नहीं कि जहान विच जेकर प्यार ना होंदा तो दुनिया रेगिस्तान वर्गी होनी सी। ते अगला गीत 80 के दहाके का वो नगमा है दोस्तों, जो दसदा है कि जो दो दिल मिलते हैं तो पूरी कायनात जश्न मनाती है। इंजॉय करते हैं किशोर कुमार ते लता मंगेशकर जी की आवाज़ के विच ए गीत।
1: क्या कहा?

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
1: आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस महीने देश भर के 232 आकाशवाणी केंद्रों से कई प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जश्न देश की सेवा में आकाशवाणी के जनतक प्रसारक वजों योगदान दर्शाते हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश तंदुरुस्ती, जनतक भागीदारी और राष्ट्रीय एकता के संदेश को उत्साहित करना है।
2: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
3: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी वालों देश व्यापी जश्नों के हिस्से वजों पंजाब विच भी अपने जलंधर ते पटियाला स्टेशनों ते पाल के 9 मई नूं एक विशेष वाकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इस समागम आकाशवाणी वालों पिछले 9 दहाकों दौरान स्रोतियों नूं निरंतर दित्तियां गईयां बेमिसाल सेवावां नूं समर्पित होएगा। इस संबंधी जानकारी दिंदिया आकाशवाणी पंजाब के कलस्टर हैड ते डिप्टी डायरैक्टर जनरल इंजीनियरिंग रणजीत मीना ने दस्सिया कि इस वाकाथॉन विच आकाशवाणी के अधिकारी ते कर्मचारी, कलाकार ते स्रोते भी आकाशवाणी के 90 सालों के शानदार सफर नूं यादगारी बनाने लई इस विच शिरकत करनगे। आकाशवाणी नाल बीते 60 सालों तो वध समय तो जुड़े स्रोते गुरमीत सिंह खानपुर ने अपनियां भावनावां सांझियां करदिआं दस्सिया।
4: मैं हाँ तुहाडा गुरमीत खानपुरी जो कि हुशियारपुर जिले के पिंड खानपुर विच रहिंदा है ते रेडियो दा दीवाना है। मैं आकाशवाणी दे 90 साल दे सफर दी बहुत बहुत प्रशंसा करदा हाँ अते मैं भी एक ऐसा यात्री हाँ जिहड़ा कि 60-65 साल तो इस नाल जुड़िया हाँ, यानी कि 1959 तो मैं आकाशवाणी जलंधर के प्रोग्राम निर्विघन सुनता आ रहा हाँ। मैं तुम्हें दसना चाहाँगा कि रेडियो ने मैनू इन्ना कुछ सिखाया और इसने देश की तरक्की विच, पंजाब की तरक्की विच बहुत ही बड़बुला हिस्सा पाया है। बहुत बहुत बधाइया इस 90 साल का सफर में तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: IPL क्रिकेट में अज दिल्ली के अरुण जेतली स्टेडियम च दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल होएगा। यह मैच शामी 7:30 बजे शुरू होएगा। अंत में चुनावियां खबरें एक बार फिर सुन लो। पश्चिमी बंगाल च BJP विधायक दल का नेता चुनने लिए अज दोपहर बाद कोलकाता च मीटिंग होएगी। रक्षा खोज ते विकास संगठन ते भारतीय हवाई फौज ने ओडिशा के तट तो टैक्टिकल एडवांसड रेंज ऑगमेंटेशन तारा रक्षा प्रणाली की सफल परख की है। तो रेलवे ने रेल सुरक्षा से जोर दिंदिया उत्तरी रेलवे के मुख्य रूटा से कवच आटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के विस्तार को मंजूरी दी है। इस खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। नमस्कार।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: आपने जाते जाते अब दिल रुला मत देना।
1: बहुत
0: जी
1: शुक्रिया जी, बहुत मोहब्बत
0: जी,
1: आपकी,
0: क्योंकि
1: छोटे सुनने वाले साथी हैं,
0: जी जी
1: बहुत
0: जी
1: सब आदाब सत श्री अकाल,
0: जी
1: बहुत मोहब्बत।
0: बहुत शुक्रिया जी। सो दोस्तों, ये सन साढ़े नाल जुड़े हुए दोस्त शायर अमरदीप सिंह जी, जो कि तकरीबन पिछले 20 सालों तो जिहड़ा है उर्दू अदब दे विच गज़ल लिखते आ रहे हैं, और इन्हां दी किताब शब के पहलू जिहड़ी है लोक अर्पण हो चुकी है जी, तुसीं पढ़ भी सकते हो। और जो उन्होंने गज़ल अज साडे नाल सांझियां कीतियां दोस्तों, मन बिल्कुल नहीं कर रहा सी कि इन्हां तो जिहड़ी है वो आपां विदा लईए, पर की कहिंदे ने कि साडे दोस्तां ने भी साडे कोल वट्सएप के जरिए बहुत सारी शायरी पहुँचती की है। सो उस शायरी नूं भी असीं रीड करांगे ते अगे वधांगे जी। साडे कोल अगली शायरी गुरबिंदर कौ जोड़ा, परमजीत कौर जोड़ा और उन्हां दे नाल रणजीत जोड़ा, उन्हां दी जी पहुंच चुकी है शायरी तरन तारण तो। लिख रहे ने जी कि इलाज नालों चंगा परहेज़ हुंदा है, दुल्हन ही असली दहेज हुंदा है, उहदे चेहरे दा दस नूर दिंदा है, खुशियां नाल जो लबरेज़ हुंदा है, आर्थिक पक्खों बदरंग ही हुंदा है, रंगां च रंगिया रंगरेज़ हुंदा है, सच्ची सियाणी गल कौन पढ़दा है, इत्थे वायरल झूठ ते नंगेज़ हुंदा है, कि बंदा बोलां तों दुख बुझ लैंदा है, जिथे दिलों दिलां नूं हेज़ हुंदा है, बहण वालियां दी औकात जाने, कुर्सियां विचकार जो मेज हुंदा है, मीह हनेरी ना गर्मी ठंड वेखे, फिटनेस दा जिहनूं करेज़ हुंदा है, कि कां वांगर कसूते थां बहिंदा है, बणदा जो कुलविंदरा तेज़ हुंदा है, बणदा जो कुलविंदरा तेज़ हुंदा है। सो ये शायरी साढ़े तक पहुँचती की सी जी तरन तारण तो। सो बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने दोस्तों का, और साढ़े कोल होर भी बहुत सारे दोस्तों की शायरी आन पहुँची है जी। एक एक करके वो भी शायरी पढ़ते जावे तो नाल मिलते जुलते गज़ल गीत असी प्ले करते जावे, पर फिलहाल समा हो चुका जी एक गज़ल प्ले करन दा। आओ जी पंकज उदास साहब की आवाज़ सुनते हैं अगली गज़ल।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। हमारा आज का विषय है थैलेसीमिया, एक बीमारी जो विरासत में मिलती है, एक संघर्ष जो जन्म से शुरू हो जाता है और एक जिम्मेदारी जो जागरूकता से निभाई जा सकती है। जो लोग थैलेसीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित हैं वो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर विशेषज्ञ से अपनी परेशानियां पूछ सकते हैं। आज हम जानेंगे आखिर थैलेसीमिया होता क्या है, क्या इसका इलाज संभव है और कैसे जागरूकता बचा सकती है आने वाली पीढ़ियों को। आज हम इसी अहम विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। साथ ही डॉक्टर साहब एडल्ट थैलेसीमिया यूनिट भी चलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार शिल्पा जी, और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सबको अभिनंदन करता हूँ।
1: डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो हमारे फ़ोन इन प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे थैलेसीमिया पे अपने एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए विस्तार से कि थैलेसीमिया क्या है।
2: हाँ शिल्पा जी, ये बहुत ज़रूरी है। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है, इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, और ये इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग जागरूकता इसके बारे में फैलाएं, जो लोगों को नहीं है उनको इससे अवगत कराएं, और अगर जिन लोगों को है तो जैसा आपने सही कहा, उन लोगों को पता होना चाहिए कि इस बीमारी से कैसे हम लोगों को डील करना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आज जो है, मैं आकाशवाणी को सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने आज के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस पे ये कार्यक्रम रखा है और लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक कदम उठाया है। थैलेसीमिया जो है, जैसे हम लोग मामूली तौर पे जानते हैं अनीमिया जैसे होता है कि खून की कमी है, तो थैलेसीमिया में भी खून की कमी होती है, लेकिन ये दूसरी तरह की खून की कमी है। ये ऐसी कमी नहीं है जो कि किसी को खान पान में कमी है या आयरन कम है या किसी और कारण से, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं उस कारण से खून की कमी हो। ये जो है थैलेसीमिया, एक अलग तरीके का एनीमिया है जिसमें कि खून की कमी होती है। आपके शरीर में जो रक्त कोशिकाएं बन रही होती हैं, जो RBCs बन रहे होते हैं, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है जिसमें कि आयरन होता है और एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन करके, वो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन रहा होता है वो ठीक से नहीं बनता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होने की वजह से, या हीमोग्लोबिन में जो है गलत तरीके से माध्यम से बनने से, जो RBCs होते हैं वो आम तौर पे 3 से 4 महीने रहते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन थैलेसीमिया के मरीजों में ये बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है 1-2 महीने में ही नष्ट हो जाए। ये डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ RBC बन रहे हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इनको हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं वो हीमोलिटिक एनीमिया की श्रेणी में करते हैं। तो जो ब्लड बन रहा है

0: जो आरबीसी बन रहे हैं वो समय से पहले, अपने समय के अनुसार नहीं, समय से पहले नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को हमें अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। साधारण भाषा में मैं यही कहना चाहूँगा।
1: तो ये होने थैलेसीमिया जो बीमारी है, इसका होने के पीछे कारण क्या है, किस वजह से ये हो जाती है?
0: देखिए, ये बीमारी जो है, ये जैसा मैंने बताया, ये किसी खान पान रहन सहन की वजह से नहीं है। ये एक जेनेटिक दिक्कत है जिसमें कि ये जीन्स के थ्रू आती है। तो ये ऊपर माँ या बाप दोनों में ही कोई दिक्कत होगी। और एक एक कण, जैसा कि हमें पता है कि बच्चा जो पैदा होता है शक्ल सूरत में माँ के ऊपर भी जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं कुछ बाप के ऊपर भी जाते हैं, तो दोनों के हिस्से से जो जीन्स आती हैं और जो कि आरबीसी के कण बनाती हैं, वो एक एक अंश दोनों के माध्यम से आता है। और जब दोनों में ही ये कैरियर स्टेट जिसे हम कहते हैं वो है, या फ्लोरेट बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष रूप से अगर थैलेसीमिया है, तो बच्चे में थैलेसीमिया की संभावना हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि दोनों माँ या बाप या तो कैरियर हैं या दोनों में से एक को ग्रस्त है थैलेसीमिया से और दूसरा कैरियर है, तो बच्चे में ये दिक्कत थैलेसीमिया की होने की संभावना हो जाती है।
1: अगर किसी को थैलेसीमिया है तो हम कैसे डायग्नोस करें, मतलब क्या कुछ लक्षण हैं कि कैसे पता लगे हाँ इसको ये बीमारी है?
0: देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा, तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि थैलेसीमिया में आरबीसी जो लाल कोशिकाएं हैं या जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और इनका कारण बाहर की कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, ये जीन्स जो हैं डिफेक्टिव उन्हीं वजह से है। तो ये जेनेटिक डिजीज़ के होने की वजह से जो थैलेसीमिया में आरबीसीज़ बन रहे हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप जो है अपने लिए इसमें ध्यान रखें कि इनको क्या दिक्कत है थैलेसीमिया की या नहीं। तो अगर ये ऊपर से आएगा तो बच्चे में प्रभाव आता है। और क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये नहीं है कि आज बच्चा पैदा हो जाएगा तो आज ही दिक्कत महसूस होगी, ये 6-8-9 महीने बाद बच्चे में होती है। तो बच्चा रोता रहता है, कमज़ोर हो जाता है, दूध नहीं पी पाता है माँ का, या फिर जो है बढ़ना बंद हो जाता है, सांस फूलने लगती है उसमें दूध पीने में। तो ये सब दिक्कतें हैं जो बच्चे में हो जाएंगी, बढ़ेगा नहीं अपनी रफ्तार से क्योंकि खून उसका कम है। क्योंकि माँ बाप ये नहीं हो सकता है, क्योंकि दौड़ भाग नहीं रहा है तो सांस नहीं फूलेगा। 6-8 महीने का बच्चा जो है तो दूध पीने में उसे थकान हो जाएगी, बढ़ना कम हो जाएगा उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है। और कई बच्चे, जब तक आप इसको संभावना नहीं रखेंगे कि थैलेसीमिया हो सकता है, तब तक आपको ये पता नहीं चलता है। इसलिए डॉक्टर को दिखा करके इसकी जांच कराना ज़रूरी है।
1: आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पर। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। तो डॉक्टर साहब, तो हमें ये बताइए कि थैलेसीमिया जो है तो वो बच्चों में ही होता है या बड़ों में भी होता है?
1: देखिए, बिल्कुल ठीक आपने पूछा। थैलेसीमिया जो है ये जन्मजात बीमारी है, तो ये बचपन से ही होती है, क्योंकि जीन्स जो हैं ये तो इनहेरिट हो जाते हैं बचपन, जब बच्चा बन जाता है तभी से। लेकिन ये किस लेवल पे, किस उम्र पे ये मैनिफेस्ट करेगा, प्रत्यक्ष होगा, इसकी बीमारी के लक्षण आएंगे, ये जो है ये बहुत फ़र्क पड़ता है। जो थैलेसीमिया मेजर है, जैसा मैंने बताया, तो उसमें तो 6-8-9 महीने में ही बच्चा जो है उसमें लक्षण आने लगते हैं, सांस फूलना, दूध नहीं पी पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी। लेकिन जो माइनर है उसमें डिपेंड करता है कितना जीन्स का जो है इनहेरिटेंस है। ऐसे भी अलग अलग जीन्स, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया भी अलग होते हैं, जो कि फ़र्क पड़ता है। तो ये वयस्कों में भी मैनिफेस्ट कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से आ सकता है। तो जो अगर एडोलिसेंट है या बड़े लोग हैं, उनमें अगर थैलेसीमिया पता चलता है तो उनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है, तो वो अपना दौड़ भाग का जो काम है या ज़रूरत से ज़्यादा, रोज़मर्रा की दिनचर्या से ज़्यादा जो काम करते हैं उसमें उन्हें करने में दिक्कत होती है।
0: डॉक्टर साहब, एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज़, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली। आज इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है कि थैलेसीमिया का मुख्य कारण क्या है होने का, और ये जेनेटिक है तो इसे जन्म के समय बच्चे को इस बीमारी से कैसे बचाएं?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जीन्स जो माँ बाप में हैं उनसे इनहेरिट होता है। तो हाँ, एक चीज़ है, आगे चल करके अगर आपको पता है कि जीन्स हैं और हम लोग जीन्स एडिट कर पाएंगे तो शायद इसका इलाज तब संभव होगा वयस्कों में भी। लेकिन जब तक नहीं ये संभव है, तब तक ये माँ बाप से बच्चे में आएगा। तो इसको बच्चे का आप जाँच करा सकते हैं, अपनी खुद की जाँच करा सकते हैं। जैसे शादी से पहले लोग जन्मपत्री मिलाते थे पहले, तो आजकल ये कई जांचें हैं जो करा लेनी चाहिए, उसमें से थैलेसीमिया की भी एक जांच है जो कि करा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप माइनर हैं, थैलेसीमिया ट्रेट है आप में या थैलेसीमिया माइनर है, तो आपको दूसरे थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो आगे आने वाली नस्ल है उसमें थैलेसीमिया के होने की संभावना होती है। मान लीजिए आपने दोनों ही थैलेसीमिया माइनर हैं, हस्बैंड वाइफ, तो फिर आपको जो बच्चा जब गर्भ ठहरता है तो आप उसकी भी जांच करा सकते हैं, जो कि एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग टेस्ट होता है, तो आप उसकी भी जांच करा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बच्चे में थैलेसीमिया होने की संभावना क्या है उसमें। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको पता चल सकती हैं और आप उस हिसाब से अपना आगे का जो है मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। और अगर बच्चे को थैलेसीमिया है तो ऐसा नहीं है कि उसका इलाज संभव नहीं है, वो भी संभव है। तो जो इनका सवाल है, मेरे ख्याल से इम्तियाज जी का हमने जवाब दे दिया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर
0: भी हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: उत्तराखंड से बोल रहे हैं, रघुवीर सिंह बोल रहे हैं मैडम
0: जी। बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना है डॉक्टर साहब।
1: हाँ नमस्कार रघुवीर सिंह जी, बताइए।
2: तो जैसे मतलब कोई आदमी है, जैसे वो अपने को कमजोर महसूस कर रहा है, तो खून की कमी है, जैसे उन्होंने चेकअप किया है हॉस्पिटल में, तो खून की बढ़ावा देने के लिए कौन से स्रोत से हम

0: बढ़ा सकते हैं खून को, अगर वो नहीं है तो अंग्रेजी दवाई कोई बताइए सर, बस यही पूछना है।
1: देखिए जो आप कह रहे हैं कमज़ोरी के कई कारण हो सकते हैं, उसमें से अनीमिया एक है, तो वो आपने बताया कि जांच में अनीमिया आया है, तो अगर अनीमिया आया है तो अनीमिया के भी कई कारण होते हैं, जैसे एक थैलेसीमिया है तो उसमें तो मैं आपको नहीं दूंगा कि आप आयरन लीजिए या अलग चीज़ें लीजिए, लेकिन अगर खुराक में कमी की वजह से या किसी को पाइल्स होती हैं या किसी को पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, अगर उनको दिक्कत है तो वो अपना न्यूट्रिशन जो है खुराक में आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आयरन के मात्रा बढ़ाने के लिए आप चीकू, अनार, सेब, केला ये सब फल ले सकते हैं, गुड़, चना, डिपेंड करता है कि अगर आपको और कोई बीमारी नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं और अपनी खुराक बढ़ा सकते हैं। इससे आपको, अगर आप खुराक पूरी ले रहे हैं और उसमें आयरन के सेवन ठीक से कर रहे हैं, चीकू जैसे मैंने बताया या आयरन, ये सेब, अनार ये सब चीज़ें लीजिए, तो खून में मात्रा बढ़ जाएगी आयरन की, तो एनीमिया ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर दवा का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर साहब से आपने परामर्श किया है उनसे एक बार बात कर लीजिएगा इस सिलसिले में।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले आपने कहा था कि शादी के समय थैलेसीमिया की जांच करा लेनी चाहिए, अगर बाय चांस किसी ने जांच नहीं कराई, हस्बैंड वाइफ दोनों को थैलेसीमिया है, तो आगे बच्चे में होने के कितने चांसेस हैं, या उसको बच्चे को आगे ना हो तो क्या उसके लिए भी कुछ इलाज है?
1: हाँ देखिए, ऐसा है कि अगर दोनों माँ बाप जो है दोनों में थैलेसीमिया की जीन है, मतलब अगर वो कैरियर हैं, तो बच्चे में होने की संभावना रहती है जो 25 से 50 फीसदी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप थैलेसीमिया मेजर हैं या थैलेसीमिया माइनर हैं। अगर ये आपको इनहेरिट हो गई है, मतलब जन्म से बच्चे में आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि सारी उम्मीद नहीं है, बच्चे को हमेशा रहना पड़ेगा। जो इसका इलाज है, अगर आपको पता चल गया है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर है, तो फिर एक आज की तारीख में पिछले कुछ सालों में हमारे पास ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। थोड़ा महंगा ज़रूर है इलाज, लेकिन ये है कि अगर आप इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, कोई और सिबलिंग है, भाई बंधु है जिसका जो है बोन मैरो मैच कर सकता है या कोई और जो मैच कर सकते हैं, तो अगर उनका एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर लाइफ लॉन्ग आपको कुछ भी नहीं करना है, ये थैलेसीमिया आपको क्योर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए जैसा आपने कहा शिल्पा जी कि अगर नहीं है बोन मैरो मैच करता है और इनहेरिट हो गया है और थैलेसीमिया आप बच्चे को है, तो फिर इनका क्योंकि खून जल्द समय से जल्दी नष्ट हो रहा है तो हमें इनको खून चढ़ाना पड़ता है, तो ये एक दिक्कत रहती है, और फिर समय समय पे इन्हें खून ज़िंदगी भर चढ़ाना पड़ता है, जो कि अपने में दिक्कत का विषय है, क्योंकि खून जो है आदमी का ही चढ़ता है और वो आपको फिर ब्लड बैंक से या कहीं से इंतज़ाम करना पड़ता है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है।
2: तो जैसे कि आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों को हो तो जेनेटिक है तो बच्चे में भी होगा ही, तो ऐसे में बच्चों को होने में प्रेगनेंसी के समय क्या दिक्कत आती है या बाद में बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं?
1: देखिए जब तक बच्चा गर्भ में होता है तब तक तो ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये है कि हाँ अगर बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद उसका जब शुरू में तो जो है एक ना हीमोग्लोबिन एफ होता है, तो वो जो है उसमें दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए बच्चे को ना शुरू के 4-6 महीने में कोई परेशानी नहीं महसूस होती है, लेकिन उसके बाद जो है बच्चे का हीमोग्लोबिन जो है वो ए में चेंज हो जाता है और अपना खुद का हीमोग्लोबिन बनने लगता है। तो वो जैसा मैंने बताया, जब अपना हीमोग्लोबिन बताया वो 3 से 4 महीने रहता है, तो जब बच्चों में भी फिर ये जब बन जाने लगता है अपना, तो फिर मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाते हैं, बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये 6 से 9 महीने पे आम तौर पे अगर अपना बिल्कुल भी थैलेसीमिया में के मरीजों में बच्चों में नहीं बन रहा है जो थैलेसीमिया मेजर होता है, तो ये 6 से 9 महीने में आपको यूजुअली पता चल जाता है। लेकिन इनमें कुछ कुछ ग्रेडियंट्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि कुछ सीवियरिटी कम हो सकती है, तो कई बार ये 1-1.5 साल की उम्र पर भी पता चल सकता है, क्योंकि कुछ प्रतिशत बन रहा हो सकता है। तो अगर आपको खून में जांच करानी होती है तो फिर आप खून में HPLC की जांच हम लोग कराते हैं, हालांकि साधारण CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट होती है या हीमोग्राम होता है जो कि कॉमनली अनीमिया के लिए कराया जाता है या रूटीन हेल्थ चेकअप्स में कराया जाता है, उसमें भी इसके बारे में हमें मतलब ज्ञान काफ़ी हद तक हो जाता है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए हम लोग HPLC टेस्ट कराते हैं, तो वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो टेस्ट करा करके फिर हम इसको कन्फर्म कर लेते हैं।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन, शरीर में आयरन बढ़ने की समस्या और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इन सभी समस्याओं के साथ, इन सभी चीज़ों के साथ थैलेसीमिया

0: थैलेसीमिया का इलाज कितना सफल है?
1: देखिए, आज की तारीख में थैलेसीमिया का इलाज काफ़ी सफल है। पिछले मैं कहूँगा 20-25-30 साल में काफ़ी उपलब्धियाँ रही हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं इस सिलसिले में और स्पेसिफिकली थैलेसीमिया के रोगियों के लिए काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी एक अच्छी चीज़ है कि ये लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे ही रेड क्रॉस जो है वो भी, जैसे हमारे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में रेड क्रॉस के और अपने ब्लड डोनेशन से सब मरीज़ों को जो है ब्लड की दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं और ये मतलब थैलेसीमिक्स इंडिया है, नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी है, ये जो बच्चे थैलेसीमिया से ग्रस्त होते हैं इनको काफ़ी जो है मदद करते रहते हैं। और हमारी सरकार ने भी जो है अपने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं और भारत सरकार के हिसाब से इनके ऊपर कोई भी खर्च नहीं आना चाहिए और सारी की सारी सुविधाएं हमारी सरकारी अस्पताल की तरफ से मरीजों को मिलती है।
0: तो ऐसी कौन सी सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं जिससे लोगों को इसका इलाज आराम से करा सकें वो?
1: देखिए, हमारे पास जितने भी बच्चे रजिस्टर हो जाते हैं तो उनको जो ब्लड की सुविधा है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि जब मैं आपको बताता हूँ 2007 में करीब 20 साल पहले हमने अपने लेडी हार्डिंग में वयस्कों का, एडल्ट्स का शुरू किया था, तो करीब 8 मरीजों से शुरू किया था। आज की तारीख में 250 से ज़्यादा मरीज जो है वयस्क मरीज, बच्चे तो हैं ही इतने, 300-350 करीब बच्चे भी होंगे, लेकिन आज की तारीख में करीब 250 से ज़्यादा मरीज जो है ये लेडी हार्डिंग में इनका इलाज चल रहा है और इनका कोई खर्चा नहीं आता है। ये मतलब उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी, कई एरियाज से, दूर दराज के एरियाज से हमारे पास आते हैं और इनको पूरा इलाज दिया जाता है। इस इलाज में जो खून की सुविधा है वो तो डोनेशन से हमारे पास रहती है, क्योंकि देखिए किसी को भी जिसको हर 15 दिन पे 2 यूनिट खून चढ़ना है वो उसके रिश्तेदार नहीं दे सकते, क्योंकि घर में कितने रिश्तेदार होंगे जो साल में मतलब 50 यूनिट डोनेट कर देंगे। तो इसलिए सरकार की तरफ से व्यवस्था और जैसे मैंने कहा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रेड क्रॉस वगैरह की तरफ से सुविधा काफ़ी रहती है और ये पीरियोडिकली ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी जो खून आता है तो ये मरीजों के काम आता है और इनको ब्लड की दिक्कत नहीं होती है। और पहले एक आधी बार हुआ है कि ऐसी परेशानियां हुई हैं इन्हें कि ब्लड शॉर्टेज है, कोविड के दौरान दिक्कत थी तो कोविड में भी सरकार ने बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराया इन लोगों के लिए कि आएँ तो दिक्कत ना हो, तो अलग अलग सुविधा थी हमारे लेडी हार्डिंग में, हम लोगों ने कभी बंद नहीं किया इनका, कोविड में हम लोगों ने अलग से ख्याल रख करके इन लोगों को खून चढ़वाया। खून चढ़वाने के बाद जो है इनको हमें बाकी खून चढ़वाने के लिए भर्ती की सुविधा, उनको जो किट्स चाहिए होते हैं उसकी, खून चढ़ाने के लिए जो किट इस्तेमाल होते हैं उनकी ट्रांसफ्यूजन सेट्स की सुविधा और बाकी दवाओं की सुविधा, ये सारी सुविधाएं और जितनी जांचें होती हैं, क्योंकि हर बार जब खून चढ़वाने आते हैं 15 दिन पे या 10वें दिन पे तो उनकी जितनी भी जांचें हैं वो सारी की सारी सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से मुफ्त ही होती हैं।
0: तो जैसे ये थैलेसीमिया बचपन से, मतलब बचपन से जब पैदा होते हैं जेनेटिक ही होता है, बड़े होने पर भी हो सकता है या फिर छूने से भी हो सकता है?
1: देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका, छूने से नहीं हो सकता है, ये बचपन से ही होता है, लेकिन ये किस समय मैनिफेस्ट करेगा या प्रत्यक्ष रूप से आएगा ये अलग अलग अवस्था में पता चलता है। तो जैसे कि अगर मेजर है तो हो सकता है कि बचपन में बिल्कुल जो है 1 साल 6 महीने 1.5 साल पे पता चल जाए, और जो बड़े लोगों में है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पता चले जब तक आप खून की जांच ना कराएं, क्योंकि हीमोग्लोबिन हो सकता है 8 ग्राम 9 ग्राम 10 ग्राम पे आप अपना सुचारू रूप से जीवन चलते रहें, हालांकि हीमोग्लोबिन कम रहता है इनका वो, लेकिन ज़िंदगी हो सकता है पूरी निकल जाए, ज़िंदगी पर्यंत तक आपको पता ना चले कि इन्हें कोई दिक्कत है, तो 50 साल 60 साल पे कभी जांच कराई आपने तब आपको हो सकता है पता चले, और अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो भी हो सकता है कि आपका जीवन नॉर्मल चलता रहे। लेकिन ये है कि हाँ, जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं उनको भी कुछ दिक्कतें होने की संभावना रहती है।
0: तो मेजर और माइनर में क्या अंतर रहता है? जिसे मेजर उसमें क्या रहेगा और जो इसको माइनर है थैलेसीमिया उसमें क्या रहेगा?
1: देखिए, ये तकनीकी सवाल है, लेकिन इसका मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कहूँगा कि जो थैलेसीमिया मेजर है आप ये समझ लीजिए वो मेजर प्रॉब्लम है, और जो थैलेसीमिया माइनर है वो माइनर प्रॉब्लम है। तो माइनर को इतनी दिक्कत नहीं होती, उनको 30-40-50 साल की उम्र तक कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, उसके बाद कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, सांस फूलना या उनके फेफड़ों में, क्योंकि इतने लंबे टाइम से ऑक्सीजन थोड़ा कम चल रहा होता है तो फेफड़ों में थोड़ी सी जो ब्लड प्रेशर जैसे है वो बढ़ने की या कुछ थ्रोम्बोसिस के एपिसोड्स हो सकते हैं, हालांकि बहुत कॉमन नहीं होते।

0: लेकिन कुछ दिक्कत हो सकती है उन्हें।
1: तो जैसे जिन बच्चों को जैसे जेनेटिक है तो बच्चों में होता है, तो क्या वो अपना नॉर्मल डे टू डे रूटीन फॉलो कर सकते हैं, मतलब खेल कूद हो गए, पढ़ाई हो गई इसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ, या उस पर भी इफ़ेक्ट आता है?
0: देखिए, अगर इनका हर मरीज़ का, हर बच्चे का जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है, उसका अपना एक कितने दिन में RBCs जो हैं, रेड सेल्स जो हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, वो एक बन जाता है 10 दिन पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे। तो उस पे अगर बच्चा खून नहीं चढ़वाएगा, तो हम लोग कोशिश करते हैं इनका खून जो है 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर रहे। आमतौर पे ये 12 से 16, 14 से 18 ग्राम होता है, तो इनका थोड़ा सा हम कम पे ही रखते हैं कि 11 से 12 के बीच में रहे, और ये करीब 8 से नीचे ना जाए किसी भी हालत में। तो आप समझ लीजिए कि कुछ तो गतिविधियाँ इनकी नॉर्मल नहीं रहती हैं, क्योंकि 8 ग्राम खून 11 से 8 पे आता है, फिर हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, फिर 11 पे ले जाते हैं, 8:30 पे आ गया, फिर ले जाते हैं वापस 11 पे ट्रांसफ्यूज़ करके। तो ये चीज़ तो दिक्कत थोड़ी रहती है, लेकिन क्योंकि इनको ये क्रॉनिक बहुत लंबे समय से रहती है दिक्कत, तो ये इनका शरीर अडेप्ट कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी सुचारू रूप से, अपनी नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, अगर इनको ब्लड जो है हर 10वें 15वें 20वें दिन जो भी उस मरीज़ का है नियमित रूप से अगर मिलता रहता है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, अपना सारा काम कर सकते हैं। हमारे पास जो आज की तारीख में है, तो ये बच्चे हालांकि अब तो बड़े हो गए, और ये 45 साल तक की उम्र के लोग जो हैं अभी बिल्कुल सुचारू रूप से अपना कार्यकाल, अपने सारे काम वाम कर रहे हैं, बाहर भी जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, अपने पेपर भी प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, अपने जॉब कर रहे हैं,
1: जी
0: आते हैं अपना करते हैं, और खून चढ़वा के अपनी ज़िंदगी पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दिक्कत तो रहती है, क्योंकि 15 दिन पे आना पड़ता है खून चढ़वाने के लिए,
1: जी
0: कोई साथ में आता है क्योंकि एडमिशन बनता है, और खून चढ़वाने के भी अपने रिस्क रहते
1: रिस्क
0: हैं,
1: रहते हैं
0: और दिक्कत होने की संभावना रहती है कुछ ना कुछ।
1: जी। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। श्रोताओं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इससे जुड़ा कोई भी सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं 1 से 2 मिनट के ऑडियो एवं वीडियो फॉर्मेट में हमारे मेल आईडी पे health@delhi.gmail.com पे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात करें थैलेसीमिया पे, तो एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं रेडियो डॉक्टर शो, मेन कॉज ऑफ थैलेसीमिया, विच एज इज थैलेसीमिया एंड वाई कांट द थैलेसीमिया टेक आयरन, रेनबो लवर्स बॉय नेम हितेंद्र दास फ्रॉम असम।
2: हाँ हितेंद्र दास जी, बहुत ठीक कहा आपने। तो जैसा मैंने बताया कि थैलेसीमिया अगर मेजर है या ज़्यादा सीवियरिटी का है तो जल्दी महसूस हो जाता है, तो आपको नवजात शिशु में 6 से 9 महीने पे उम्र पे पता चल जाता है। बाकी जैसा है, आयरन इन लोगों में इसलिए नहीं देते क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा था शुरू में, ये एक हीमोलिटिक अनीमिया है। तो इसमें क्या होता है कि RBC बन रहे हैं उसमें आयरन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो ये ग्लोबिन चेन्स हैं वो ख़राब होती हैं इसमें, और वो जीन्स के जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। तो आयरन की कमी की वजह से इसमें अनीमिया नहीं होता है। जो हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है उसमें

0: में हीम आयरन वाली प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसकी वाली प्रॉब्लम है, तो वो चेन्स जो है वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है आरबीसीज जो हैं जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इन पेशेंट्स में आयरन की कमी नहीं होती। दूसरा, इन पेशेंट्स में हम हर 15 दिन पे या हर 10 दिन पे या हर 3 हफ्ते पे अगर हम खून चढ़ा रहे हैं, तो ये जो खून चढ़ता है ये तो नॉर्मल आदमी का खून चढ़ता है, तो ये आयरन रिप्लीट होता है, इसमें आयरन अच्छे खासा मात्रा में होता है। तो इनका अपने शरीर का आयरन जो कि पुराने आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसकी वजह से होते हैं, और जो बाकी हम खून देते हैं उसका आयरन इनमें होता है। तो इसलिए ये इनमें आयरन हम लोग अवॉइड करते हैं, बल्कि जो आयरन रिच फूड्स होते हैं हम इन्हें हिदायत देते हैं कि ये ना लें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि थैलेसीमिया के मरीज़ों को आयरन यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इनमें नहीं होता है यूजुअली आमतौर पर।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है केशव बिष्ट का, ये लिखते हैं सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है और इसका सक्सेस रेट क्या है थैलेसीमिया में।
0: देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा केशव जी, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब कि आपको किसी और मनुष्य का बोन मैरो मतलब जो गूदा है अपनी हड्डी के अंदर जो होता है मैरो जिसे कहते हैं, वो आपको निकाल करके इन पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी विधि है, एक तो आपको पहले मैच करना पड़ता है, ये कई लेवल की मैचिंग होती है, जैसे ब्लड ग्रुपिंग की मैचिंग होती है, HLA की मैचिंग होती है, ये सब जो है प्रक्रिया अलग होती है, इसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, जो डोनेट करता है उसके टेस्ट होते हैं, जिसमें रिसिपिएंट जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है उसके अलग टेस्ट होते हैं, और उसके बाद मैचिंग होती है कि ये मैच करेगा या नहीं करेगा। अगर मैचिंग की संभावना रहती है तो फिर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और उसके बाद ये बोन मैरो जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट मतलब जब हो जाता है, तो शरीर उसे रिजेक्ट ना करे जैसा आपने पूछा है, तो थैलेसीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सफलता काफ़ी ज़्यादा रहती है। हालांकि किसी भी ट्रांसप्लांट में आप उस आदमी के लिए पूछें तो वो 0% या 100% दोनों ही हो सकती है, क्योंकि जो हम आंकड़े बताते हैं 40% सक्सेस रेट है या 50% सक्सेस रेट है, वो तो 100 लोगों में 50 लोगों में हम मान करके चल रहे हैं या 40 लोगों में मान के चल रहे हैं अगर हम 40% कह रहे हैं, लेकिन उस मनुष्य के लिए तो उसमें वो अगर सक्सेस हो गया तो सक्सेस है, नहीं सक्सेस है तो नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी क्योंकि इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन अवॉइड हो जाता है, तो थैलेसीमिया में कोशिश करना चाहिए और जल्द से जल्द कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ट्रांसफ्यूजन कर चुके हैं उसके बाद अब अगर आप कोशिश करेंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल होने में दिक्कत होती है।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है जोगिंदर सिंह का, ये लिखते हैं डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं जोगिंदर दैया सोनीपत से बोल रहा हूँ, मेरी बेटी को इंटरमीडिएट थैलेसीमिया है, उसकी उम्र 10 वर्ष है, मेरी बेटी का इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है और गुड़िया का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम के पास रहता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गुड़िया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाए या नहीं कराया जाए, तो इसका अधिकतम खर्च आपके अस्पताल में कितना होगा।
0: देखिए अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया हम अपने अस्पताल में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सालों में शुरू हो जाए, अभी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ इसका आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का अलग अलग अस्पताल में अलग अलग खर्चा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 8 ग्राम खून है तो क्या इन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं, क्योंकि अगर थैलेसीमिया माइनर है कई बार इनको ब्लड तो कम होता है जैसा मैंने बताया, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है कि अभी तक नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा, निगरानी में रखना पड़ेगा, और क्या दिक्कतें हैं वो आपको मरीज़ को देखनी पड़ेंगी कि क्या परेशानियाँ हो रही हैं। तो एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, और आज आपको अवगत हुआ है कि हाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल इलाज है, तो अपने डॉक्टर साहब से इससे ज़रूर पूछें, और अब वो आपको ज़रूर राय देंगे। अगर अभी तक उन्होंने नहीं बताया है तो लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा, खर्चा तो एक चीज़ है ही, लेकिन एक सक्सेसफुल डोनर भी होना चाहिए। अगर बच्चा आपका एक कोई और बच्चा है जो कि थैलेसीमिया से ग्रस्त नहीं है, तो उसका जो बोन मैरो है वो ट्रांसप्लांट करना सबसे उचित रहता है। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, और सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पहले ज़रूरत है नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो जिन लोगों को बहुत सीवियर माइनर में हम लोग यूजुअली एडवाइस नहीं करते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और दिक्कत है उससे पहले तो मैं एडवाइस करूँगा कि आपको एक बार इसका सोच लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब से ज़रूर परामर्श करें और वो आपको इसमें गाइड

0: कर देंगे।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कहा, तो ये कितनी बार कराना पड़ता है, कितने समय के इंटरवल्स पे कराना पड़ता है?
0: देखिए, अब बचपन में आपको हो सकता है कि 3-3 हफ्ते पे कराना पड़े, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके शरीर में, क्योंकि हर 3 हफ्ते पे खून चढ़ रहा है या हर 2 हफ्ते पे खून चढ़ रहा है, तो कई बार स्प्लीन जैसे है या लिवर है, ये ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं और ये आपके जो ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसीज हैं जो आपको मिल रहे होते हैं, जो मरीज को मिल रहे होते हैं अच्छे, मतलब नॉर्मल आदमी के ब्लड, वो आरबीसीज वो भी डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 हफ्ते से हो सकता है 10 दिन हो जाए, हो सकता है हर हफ्ते करना पड़ जाए, तो ये बहुत सारी अलग समस्याएँ होने की चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है, और इसलिए हमें मरीजों को देखना पड़ता है कि क्या दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं या क्या परेशानी हो रही हैं। तो इन सब परेशानियों पे निगरानी रखना, वो भी एक, जैसे आपने पूछा कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो सब सुविधा भी हमें बीच बीच में देखनी पड़ती है। वो बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें, आप कहेंगे तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, माई HPLC रिपोर्ट शोज RBC काउंट 3.8 HB इज 8.4, इट इज थैलेसीमिया और नॉट, विद रिगार्ड्स चित्रा सेठी अजमेर।
0: ये रिपोर्ट ठीक नहीं है या कुछ आपने पार्टली बोली है, ये जिन डॉक्टर साहब से आपने कराई है एक बार देखना पड़ेगा। उसमें HPLC रिपोर्ट में आपका हीमोग्लोबिन A2F ये सब चीज़ें का प्रोपोर्शन आता है, और जो थैलेसीमिया के लोग हैं उनमें हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो 95% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये परसेंटेज जो है अलग अलग रहती है। तो इसको मैं आपको वैसे भी तकनीकी जो है टेक्निकल बिल्कुल एडवाइस नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि उससे ना पैनिक बढ़ जाता है और हर कोई अपना HPLC कराना देखना शुरू कर जाएगा। तो ये शायद आपकी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट और RBC की रिपोर्ट और HPLC की रिपोर्ट कुछ मिक्स हो गई है जो आपने भेजी है, लेकिन जिन डॉक्टर साहब ने कराई है उनसे ज़रूर एक बार आए लें। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और उसमें HPLC में मुझे लगता नहीं कि आपको थैलेसीमिया होगा अगर आप मैसेज कर रहे हैं ऐसे।
1: तो इसी से रिलेटेड एक और मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, कितने हीमोग्लोबिन के नीचे PRBC का ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए और कितने हीमोग्लोबिन काउंट के ऊपर हमें पेशेंट्स को रखना चाहिए, आयरन ओवरलोड क्यों हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट। क्वेश्चन बाय अनिल शर्मा फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
0: मैं मानता हूँ कि ये सारे सवाल जो है ये थैलेसीमिया रोगियों के लिए हैं। तो जैसा मैंने बताया, अगर थैलेसीमिया रोगियों में, देखिए, हीमोग्लोबिन अगर आपको थैलेसीमिया नहीं है और 8 ग्राम है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको खून चढ़ाया जाए। तो लेकिन अगर थैलेसीमिया है और अगर आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है और वो कम हो रहा है हर बार, जैसा मैंने बताया कि हम कोशिश करते हैं 11 से 12 के बीच में रहे या 10 से 11 के बीच में रहे, अगर वो कम होकर के 8-8.5 के आसपास आ रहा है तो ज़रूर खून चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका, जैसे अभी बात हुई थी, किसी का थैलेसीमिया ट्रेट है और 9 ग्राम ही हीमोग्लोबिन रह रहा है, अब वो 9 से 8.5 हो गया है, तो ये लेबोरेटरी वेरिएशन हो सकती है, कुछ और कारण हो सकते हैं जिसको हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। इस पे खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं जो है रेडियो के, आकाशवाणी के माध्यम से, मैं ये राय नहीं दे सकता हूँ बिल्कुल कि अगर आपका 8 है तो आज खून चढ़वाना ही है या आपका 10 है तो आज खून नहीं चढ़वाना है। देखिए, मैं बहुत साफ बात बताऊं, अगर आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है और आज 10 हो गया है तो हो सकता है आपको खून चढ़वाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन मान लीजिए आपका कल तक 11 ही ग्राम खून था और आज वो 10 या 10.5 आ रहा है तो आपको खून चढ़वाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कई चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपको खून चढ़वाना है या नहीं। थैलेसीमिया में मैंने बस ऐसे बताया, जो लोग थैलेसीमिया मेजर हैं जिनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उनका हम कोशिश करते हैं कि 2-2.5 ग्राम या 3 ग्राम तक अगर कम हो जाता है तो हमें उन्हें खून चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि उनको बाकी उनकी ग्रोथ पे या उनके काम करने में दिक्कत नहीं हो।
1: थैलेसीमिया पहचानने के लिए क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि इस बीमारी की पहचान के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? क्या आम ब्लड टेस्ट से इसकी पहचान की जा सकती है या कुछ डिफरेंट टेस्ट हैं इसके लिए?
1: देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिल्पा जी आप। इसमें आम ब्लड टेस्ट से हम इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कायदे से हमें इसका जो है HPLC यूजुअली हम लोग कराते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि इसमें कितना हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल बन रहा है नहीं बन रहा है। तो HPLC या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रिप्टोग्राफी जो टेक्निक है, उसी से ही इसको जो है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस लोग कराते हैं, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है कि कितना जो है हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, कितना जो है एबनॉर्मल है।
0: और इसका इलाज कितने प्रतिशत मतलब सफल है, मतलब कितने प्रतिशत वो बिल्कुल ठीक हो जाता है जो इलाज ले रहे हो?
1: देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में हमारे पास कई इलाज हैं संभव, जिसकी वजह से जैसे खून चढ़ना है वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन खून चढ़ने से आयरन की मात्रा भी बढ़ जाती है जैसे कि बात हुई थी, तो उसको भी हमारे पास पहले एक ही दवा आती थी, आज की तारीख में हमारे पास 3 दवाएं हैं और वो मुंह से ली जा सकती हैं, पहले तो हमें उसे इंजेक्शन से ही देने पड़ते थे। तो काफ़ी ज़्यादा तकनीकी हमारे पास एडवांसमेंट हो गए हैं और इसमें रोगी जो हैं उनको, थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनको नियर नॉर्मल जो लाइफ है वो अपनी ये सुचारू रूप से कर सकते हैं, व्याप्त कर सकते हैं। और इसमें जो है सरकार ने जो है डिसेबिलिटी में भी थैलेसीमिया को इंक्लूड कर लिया है, उससे भी

0: लोगों को काफ़ी जो है आराम मिला है और ये लोग अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके लिए मेहनत की है और आज की तारीख में थैलेसीमिया एक डिसेबिलिटी, सर्टिफाइड डिसेबिलिटी है। तो और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं थैलेसीमिया सर्टिफिकेशन होता भी है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इन मरीज़ों को मतलब नॉर्मल लाइफ अपना खुद जो है स्वावलंबी बन करके अपना खुद मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और अपना सारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को आज की तारीख में।
1: तो इसका जो इलाज है वो महंगा है या इजी टू अफोर्ड है? मतलब
0: देखिए, अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो इजी टू अफोर्ड तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं और दवाइयाँ लेनी भी ज़्यादा मात्रा में पड़ती हैं और रेगुलरली लेनी पड़ती हैं, साल दर साल लेनी होती हैं। सिर्फ ब्लड चढ़वाना और ब्लड को चिलेट करना, जो आयरन है उसको चिलेट करना या उसको कम करने की दवाएँ, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी क्योंकि आयरन काफ़ी जाता है, उससे आयरन शरीर के कई अंगों में जमा हो जाता है, तो उस अंगों में दिक्कतें जो होती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बोन की दिक्कत होती है और हार्ट की भी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती हैं, थायराइड की, डायबिटीज़, ये सब दिक्कतें जो हैं इनका भी इलाज हमें करना पड़ जाता है। तो अगर आप मानेंगे तो कोई भी एक बीमारी का इलाज जो है महंगा तो हो ही जाता है, तो अगर आपके पास कई बीमारियां हो जाएंगी जिनमें कि आयरन दिख जहाँ जहाँ जमा हो रहा है, जिस जिस अंग में जमा हो रहा है, उसकी हमें अगर इलाज करना पड़ेगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सस्ता होगा। जो इवन हमें इन फिल्टर इन लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो खून चढ़ता है वो साधारण खून नहीं होता है, ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड खून चढ़ता है जिसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो सरकार, हमारे तो सरकारी अस्पताल, इसलिए सरकार खर्चा बियर करती है। और नहीं तो हम लोग जो ल्यूकोसाइट डिप्लीटिंग फिल्टर्स यूज़ करते हैं, उसका एक फ़िल्टर का कॉस्ट ही 1800-2000 रुपये है, तो हर ट्रांसफ्यूजन के लिए वो यूज़ होते हैं, तो खर्चा सस्ता नहीं है। इसीलिए किसी अस्पताल से या एनजीओ के तहत अगर इन्हें मिल रहा है तो इनको काफ़ी फ़ायदा रहता है।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मेमन सर, थैलेसीमिया माइनर, क्या आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं?
0: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि मैं थैलेसीमिया के लिए कह चुका हूँ कि आयरन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, तो अगर थैलेसीमिया माइनर हैं तो भी आयरन सप्लीमेंट, जब तक बिल्कुल आयरन डिफिशियंसी डॉक्यूमेंटेड नहीं है तब तक नहीं लेना चाहिए। ज़रूर डॉक्टर से परामर्श करें। कायदे से तो थैलेसीमिया माइनर में भी कुछ हीमोलिसिस या कुछ आरबीसी जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, इसलिए उनको आयरन की कमी नहीं होती है, आयरन ज़्यादा ही होता है। तो जब तक बिल्कुल ही ये ना पता हो कि हाँ आयरन कम है शरीर में, तभी लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज लेना नहीं चाहिए।
1: तो क्या इससे जुड़ी कोई रिसेंट रिसर्च है कि जिससे लगे कि हाँ इस आगे नहीं होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। काफ़ी नई दवाइयाँ आ रही हैं जिनसे लेने से, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं, कुछ लोग किसी किसी चीज़ का सेवन करते रहते हैं, जिनसे आपका आयरन का, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स है उसका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, और जो आपके अपने शरीर में बन रहे होते हैं आरबीसीज, जो रेड सेल्स बन रहे होते हैं, लाल कोशिकाएं बन रही होती हैं, वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं, उनकी रहने की अवधि थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको खून उतनी जल्दी नहीं चढ़वाना पड़ता है। तो ये कई नई दवाइयाँ आई हैं अभी हाल में, पिछले 3-4 साल में, जिससे कि हम ये संभव प्रयास कर सकते हैं कि इनका खून अगर 14 दिन पर चढ़ रहा है तो हो सकता है कि 17 दिन पर चढ़े या खून की चढ़ाने की मात्रा कम हो जाए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले आपने बताया था कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका इलाज है, तो क्या उससे ये, जैसे डिजीज़ जेनेटिक है, तो क्या उससे ये है कि आगे की जो जनरेशन है उसको ये नहीं होगा अगर इंसान अगर ये करा लेता है तो?
0: नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट उस मरीज के लिए तो ठीक है, लेकिन जीन्स नहीं चेंज होती है। तो आप ट्रांसप्लांट करके जो है बोन मैरो बदलते हैं, जीन्स नहीं चेंज होती हैं, तो जीन्स तो वही रहेंगी, तो आपको ध्यान आगे की नस्ल के लिए तो देना पड़ेगा।
1: कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आगे ये चीज़ ठीक हो जाए, आगे जनरेशन में ना हो?
0: देखिए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो कैरियर है थैलेसीमिया का, वो जीन जो एक है, अंश है, तो उससे मैरिज जो है वो नॉन कैरियर करे, जो कि नॉर्मल आदमी है जिसमें बिल्कुल भी कैरियर की अवस्था नहीं है, तो धीरे धीरे ये कम हो जाएगा।
1: तो आपने वैसे ये बताइए हमारे श्रोताओं की, जिन लोगों को थैलेसीमिया है तो उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए?
0: देखिए, थैलेसीमिया रोगी जो है, मैं आपको बताता हूँ, शुरू शुरू में जब ये शुरू किया था हमारे यहाँ लेडी हार्डिंग में वयस्कों का क्लिनिक, तो दूर से मुरादाबाद, बड़ौत, इधर जगह से लोगों के शाम

0: शुरू शुरू में जब ये शुरू किया था हमारे यहाँ लेडी हार्डिंग में वयस्कों का क्लिनिक, तो दूर से मुरादाबाद बड़ौत इधर जगह से लोगों के शाम को फ़ोन आते थे कि डॉक्टर साहब ये आपके यहाँ ब्लड चढ़ रहा है, खून चढ़ रहा है इस मरीज़ का, ये थैलेसीमिया का है, तो मैं इनको ये दवा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो बहुत ही असमंजस होता था कि भाई ये दवा, मतलब ठीक है, अच्छी बात है उन डॉक्टर साहब की भी कि वो पूछ रहे हैं। तो मैं ये एक आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया रोगी जो है बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ उन्हें दिक्कत ये है कि उन्हें खून चढ़वाना पड़ता है और इसलिए उन्हें खून संबंधित बीमारियां होने की संभावना रहती है, और थैलेसीमिया से ग्रस्त होने की वजह से उनको अपने शरीर में कुछ कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई परेशानी और नहीं होती है। तो उनके लिए जो है आप सारी दवाएं, सारी खुराक वो दे सकते हैं जो कि नॉर्मल आदमी को दे सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने बताया कि आयरन जो है, जिन चीज़ों में आयरन है वो नहीं लेनी है। तो कई बार हम लोग जो है आयरन के वैसे जो बर्तन होते हैं उनमें खाना खाते हैं, वो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा लोग आज की तारीख में नहीं लेते हैं, लेकिन उनमें इनको खाना और पानी नहीं देना चाहिए।
1: इन सब चीज़ों के साथ ऐसी कोई जागरूकता या अवेयरनेस जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है।
0: लोगों के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि अपना जो है जब भी अगली बार जांच कराएं तो उसमें ध्यान दें कि उन्हें थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, और अपने बच्चों में ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आपके बच्चों में या आपके बच्चों के जो बच्चा हो तो उसे थैलेसीमिया हो। तो आज विश्व थैलेसीमिया दिवस पे मैं यही सबसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों के बारे में तो ज़रूर देखें और ये सोचें, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अपने बारे में भी स्टेटस क्लियर कर लें, क्योंकि कोई भी, अगर हम लोग सब जागरूक रहेंगे और अपना हमें पता होगा कि हम थैलेसीमिया माइनर हैं या नहीं हैं, मैं मेजर को तो पता ही है, जो थैलेसीमिया माइनर अगर हमें पता है कि हम नहीं हैं तो कम से कम हम आगे आने वाली नस्ल को तो थैलेसीमिया जैसे रोग से बचा सकते हैं, और तभी जा कर के धीरे धीरे कम होगी ये बीमारी और हमारा जो इतनी परेशानियाँ हैं वो किसी को हमारे घरों में नहीं झेलनी पड़ेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे आखिर में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, सबको स्वस्थ रहना चाहिए, और थैलेसीमिया जैसी बीमारी जो कि प्रिवेंट की जा सकती है और जिसके लिए सरकार काफ़ी रोकथाम कर रही है, जो एंटीनेटल मदर्स हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी भी नेस्ट्रॉट और काफ़ी जांचें होती हैं, तो उसका ज़रूर जांच कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं अपने जो जच्चा है उनका, जिससे कि ये सारे टेस्ट हों, और अपनी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट जब भी अगली बार कराएं तो डॉक्टर साहब से ज़रूर एक बार थैलेसीमिया के बारे में पूछें, जिससे कि आपका भी ज्ञान बढ़े और आप आगे आने वाली नस्लों को थैलेसीमिया जैसी बीमारी से बचा सकें।
1: तो श्रोताओं, थैलेसीमिया से लड़ाई सिर्फ अस्पतालों से में नहीं बल्कि जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ भी लड़ी जाती है। अगर समय रहते जांच हो और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे तो आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी और आपको धन्यवाद, श्रोताओं को भी धन्यवाद।
1: आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही उपयोगी और जागरूकता से भरे कार्यक्रमों के लिए। साथ ही आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है health@aardelhi.com। दोस्तों, आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो श्रोताओं, आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। बीमारी कोई भी हो, जागरूकता ज़रूरी है, और यही संदेश लेकर आता है आपका अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

गांव वालों, बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम सुनते रहिए 102.7 FM।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चावान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौंक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
2: FM 102.7 MHz ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਰੇਨਬੋ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 6:20 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਠੀਕ 6:20 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ। ਠੀਕ 6:30 ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

नमस्कार, शाम 7 बजे से एफएम न्यूज हेडलाइंस। राष्ट्रीय महिला कमीशन एनसीडब्ल्यू ने किनौने जिनसी अपराधा दे मामले विच तेज मुकदमिया, मजबूत निगरानी अते पैरोल उते पाबंदी लाउन दी मांग कीती है। पंजाब कर विभाग ने एक संगठित फर्जी बिलिंग नेटवर्क दा सफलता नाल पर्दाफाश करदिया लुधियाना दी एक फर्म दे डायरेक्टर नू वड्डा GST घोटाला करन दे दोष विच गिरफ्तार कीता है। पंजाब दे राजपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने अज पंजाब लोक भवन विखे विश्व रेड क्रॉस

0: नाचो।
1: गली गली और गांव गांव में पीटो आज ढंढोरा। गली गली और गांव गांव में पीटो आज ढंढोरा।

हाँ जी, मैं श्री किशोर कुमार की आवाज में तुसी गीत सुनिया गली गली गाँव गाँव। मैं कह जी टिंडोरा एक होर भी जड़ा है बजाना चाहिए है। टिंडोरा की प्रोग्राम फिल्में दुनिया का जड़ा है आगाज हो चुका है, तो बड़ा खूबसूरत जड़ा है आगाज होया है। तो फिर मैं कह जी इस सिनेमा दी रेल गड्डी नू अगे वधाने हैं, तो अज पिंडा दे वल, पिंडा दे एक एक स्टेशन वल चलांगे। इस स्टेशन दे विच सब तो पहला गल करांगे सन 1953 दे विच रिलीज हुई हिंदी क्लासिक फिल्म। फिल्म का नाम से दो बीघा जमीन, बीमल रॉय की डायरेक्शन दे विच बनी बा कमाल फिल्म, जिसके स्टार कास्ट की गल करिए बलराज सहानी, निरूपा रॉय, रतन कुमार ते मीना कुमार री वर्गे जड़े नाम इस विच शामिल है। कहानी फिल्म की बेस्ड है रविंद्रनाथ टैगोर की कविता दुई बीघा जोमी। इस कविता तो इस फिल्म का बीमल रॉय प्रेरणा मिली सी। फिल्म की कहानी की गल करिए तो दोस्तों एक कहानी है गरीब किसान शंभू यानी कि बलराज सहानी की, जो शंभू के किरदार विच नजर आते हैं, जिस कोल सिर्फ दो बीघा जमीन है। तो दो बीघा जमीन जो है वो भी किराए थे है। पिंड का एक लालची जमींदार है जो उसकी जमीन ते मिल लगाना चाहता है। हुण शंभू नूं पुराना कर्जा मोड़न लई अदालत भी घसीटदा है। अपनी जमीन बचाउण लई शंभू नूं बहुत घट समें विच इक वड्डी रकम दी लोड़ हुंदी है। पैसिआं दी कमी हुंदी है ते इस कमी नूं पूरा करन वास्ते पहुंचदा है कलकत्ते। रिक्शा चलांदा है ते शहर दी पीड़ ते गरीबी विच बहुत संघर्ष करदा है, पर अंत विच उहदी जमीन, उहदी प्यारी जमीन जिहड़ी है, उहदी मिट्टी जिहड़ी है, उहदे हत्थों चली जांदी है। ते फिल्म का जिहड़ा एंड है बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है कि किस तरह जो शंभू एक मुट्ठी भर मिट्टी जो लैन लई हाथ अपना जमीन च पाता है, पर वह मिट्टी नहीं लै पाता, उसनू मिट्टी चुकन तो भी जिहड़ा है रोक दिता जाता है।

कोई भी मुकाबला कोई फिल्म नहीं कर सकती। महबूब खान के निर्देशन दे विच बनी फिल्म जिस विच स्टार कास्ट की गल करिए नरगिस जो कि राधा के किरदार विच हुंदी है ते राधा दा साथ दिता स्क्रीन ते सुनील दत्त जिन्ना जो बिरजू के किरदार विच सी ते नरगिस दे बेटे सन। इस तो इलावा राजेंद्र कुमार ते राजकुमार ने राजकुमार इस फिल्म दे विच नरगिस दे हसबेंड दा किरदार प्ले करदे आ ते सुनील दत्त ते राजेंद्र कुमार इन्हां दोनों दे बेटे हुंदे आ। फिल्म की गल करिए फिल्म की कहानी है राधा नां दी इक गरीब औरत दे संघर्ष की जो अपने पति दे दुनिया तो चले जाण तो बाद समाज नाल लड़दी है आर्थिक हालात नाल लड़दी है पर हार नहीं मनदी क्योंकि मां कदे भी हार नहीं मनदी। ते बस इन्हां सारे हालातों का निडर होकर सामना करती है ते एक लालची शाहूकार दे चुंगल विचों अपनी इज्जत ते जमीन जिहड़ी है दोनों ही बचाती है। उसका छोटा पुत्र बिरजू यानी कि सुनील दत्त वो बागी है ते वो बागी होकर डाकू बन जाता है ते फिल्म दे आखिर दे विच राधा नूं अपने असूलों लई अपने ही पुत्र नूं गोली मारनी पैंदी है। इस फिल्म नूं दोस्तों ऑस्कर लई नामजद होण वाली है पहली इंडियन फिल्म सी जो सिर्फ एक वोट नाल हारी सी मतलब मुकाबला पूरे टक्कर दा सी। फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले बेस्ट फिल्म दे बेस्ट डायरेक्टर दे बेस्ट एक्ट्रेस दा अवार्ड भी मिलिया नरगिस नूं। इस नाल ही दोस्तों एक होर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट की गल करिए इस फिल्म दे सैट ते ही एक वारी कहिंदे आ जो फिल्म दी शूटिंग चल रही सी ते अग लग गई ते इस दे विच सुनील दत्त ने नरगिस दी जान बचाई। नरगिस सुनील दत्त तो इन्नी ज़्यादा जड़ा है इंप्रेस हुई इन्नी ज़्यादा प्रभावित हुई कि इस फिल्म तो बाद दोहां ने विआह करवा लिया ते बस स्क्रीन ते माँ बेटे दी जोड़ी असल दे विच मियाँ बीबी दी जोड़ी बन गई। एक होर तुहानू फैक्ट दस चली इस फिल्म बारे कि फिल्म जड़ी है महबूब खान ने पहला भी बनाई सी 1940 दे विच ते इस फिल्म दा नाम रखिया सी औरत ते औरत दा रीमेक सी मदर इंडिया। बस रीमेक जो आया बॉक्स ऑफिस से इसने नवे रिकॉर्ड जड़े है वह कायम कर दते। पिंडा दे गलियां विच बनी ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत है चाहे इस फिल्म दे गीतां दी गल करिए या फिर फिल्म दे अदाकारां दी एक्टिंग दी गल करिए हर एक चीज़ तारीफ दे काबिल है।

सिनेमा एक्सप्रेस सुन पहुंच चुकी है अपनी अगली फिल्म दे सकते। जी हाँ, आज टाइम ट्रेवल हो रहा है मैगे जी। सिनेमा एक्सप्रेस तो उनकी नहीं मिल रही सिवाय एफएम रेनबो दे। जी हाँ, सिनेमा एक्सप्रेस सुनो मैं कह जी अगले जिस मूवी के सेट पे पहुंच गए। फिल्म का नाम है जी मधुमती। 1958 दे विच रिलीज हुई अगली क्लासिक हिंदी फिल्म जो कि बेस्ड है पुनर्जन्म दे उते। पुनर्जन्म दे उते दोस्तों बड़िया सारिया आप फिल्मा वेखिया अलग अलग समय से, अलग अलग स्टार कास्ट दिया फिल्मा भी देखी है, सीरियल्स भी देखे है। पुनर्जन्म जदों एक बंदा जदों है जदों दुनिया छड्ड जांदा है उस तो बाद जड़ा है उस बंदे का जन्म हुंदा है ते किस तरह पुरानी जिंदगी उस नवी जिंदगी नू प्रभावित करती है। इस प्लॉट ते जड़ी है, इस थीम ते जड़ियां फिल्मां बनदियां हैं, उन्हां विचों ही एक फिल्म है मधुमती, बिमल रॉय दी अगली क्लासिक फिल्म। फिल्म की स्टारकास्ट की गल करिए इस दे विच नजर आए अनंत देवेंद्र के किरदार दे विच दिलीप कुमार, मधुमती का किरदार प्ले किया विजयंती माला ने। राजा उगर नारायण के किरदार विच प्राण नजर आए तो इस दे नाल ही नाल मैं कह जी एक अजिहा ना जो कि पुरानी फिल्मों की जड़ी है जान ते शान दोनों मनिया जाता है, जॉनी वॉकर इस फिल्म दे विच चरणदास के किरदार विच होंदे आ। फिल्म की कहानी हुण शुरू करिए तो कहानी है एक पहाड़ी इलाके विच जो आनंद है उसकी कहानी है, जो उत्थे एक कबायली कुड़ी जिसका नाम है मधुमती उस नाल प्यार करता है। एक जालम जिमीदार कारण जिहड़ा मधुमती जिहड़ी है उसकी मौत हो जाती है। हुण आनंद भी कहिंदे खुदकुशी कर लैंदा फिल्म विच, पर बाद विच आनंद का पुनर्जन्म हुंदा है अते वह अपने पुराने जन्म के दुश्मन नूं सजा दिवाण लई मधुमती दे हमशकल माधवी की मदद लैंदा है। तो कहानी जिहड़ी है बड़ी उस समय इंट्रस्टिंग मनी गई क्योंकि उस समय पुनर्जन्म के उत्ते बहुत सारिया फिल्मां नहीं सी बनिया हुई। फिल्म दी प्राप्तियां दी गल करिए दोस्तों, ये 1958 की सब तो वध कमाई करन वाली एक फिल्म सी। तो फिल्म ने 9 फिल्म फेयर जड़े अवार्ड जितते, बेस्ट फीचर फिल्म द नैशनल अवार्ड तो मिले ही मिले। इस नाल ही फिल्म की जो असी गल करिए इस फिल्म जी है फिल्म इस शाहरुख खान की ओम शांति ओम समेत कई बहुत सारी जी मैं तुम्हें कहना वक् वक् समय से फिल्म आई हैं वो कहानियां वास्ते जी है फिल्म प्रेरणा बनी। तो इस ही मधुमती का जो पहला रोल सेगा उस वास्ते विजयंती माला बेस्ट एक्ट्रेस वास्ते जड़ा है इसकी नामजदगी की।

मैगजी ठहजो ठहजो, प्रोग्राम अजे बाकी है। राम राम नो जी, वक्त है थोड़ा। प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच सिनेमा एक्सप्रेस अगली जिस स्टेशन ते पहुंच गया वो है जी 1970 दे विच आई फिल्म गोपी। फिल्म दी कहानी दी गल करदे आं। सब तो पहला गोपी दी कहानी है जो कि एक पिंड विच रहन वाला ईमानदार सीधा साधा पर बेरोजगार नौजवान है। किस तरह उसकी जिंदगी दे विच उतार चढ़ाव आते हैं, किस तरह एक कुड़ी दी जिहड़ी है उसकी जिंदगी दे विच जो मैं कह जी एंट्री होंदी है, किस तरह उसकी जिंदगी बदलती है, तो पिंड का जमींदार गोपी के परिवार को किस तरह परेशान करता है, तो किस तरह गोपी नीडर होकर अपने परिवार अपना अपने पिंड की जड़ी है शान वधांदा है, तो उस जमींदार को जड़ा है चंगा जड़ा है सबक सिखांदा है। देखिए जी प्रोग्राम दे विच वेला जड़ा है वो हुन साढ़े ये भी इशारा कर रहा है समा थोड़ा बाकी है, क्योंकि इस प्रोग्राम तो बाद एक होर खास प्रोग्राम तो हाड़े वास्ते लेके हाजिर होवांगे। शुक्रवार का दिन है मैं जी, तो पब्लिक मंच प्रोग्राम लैके बहुत जल्द हाजिर होवांगे, तो छेती छेती तैयार हो जावो क्योंकि अज प्रोग्राम दे विच करनियां गल्लां बातां, पर समा रहेगा 8 बजे तो लैके 9 बजे तक। फिल्म अगली जिस बारे गलबात करने जा रही हूँ है जी मेरा गांव मेरा देश। 1971 दे विच आई एक रोमांटिक क्लासिक फिल्म। फिल्म दे विच नजर आए धर्मपाजी का साथ दिता आशा पारिख ने। पिंड दियां गलियां दी खूबसूरती,

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: बस बस बस बस मैं क्या जी सिनेमा एक्सप्रेस

अपने आखिरी जो है स्टेशन तक पहुंच गई है। ना ना ये सफर जारी रहेगा, पर मैं क्या जी ये जोड़ा सी अज खास पिंडर नू जोड़ा है याद कर रहे हैं प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच। इस दे विच मैं अगली जिस फिल्म दा तो हाड़नू दसन जा रही हूँ। फिल्म है जी चित चोर, 1976 दे विच आई, बासु चटर्जी द्वारा निर्देशन किया गया। तो इस फिल्म दे विच नजर आए अमोल पालेकर, जरीना वहाब ते विजेंद्र घाटके। फिल्म की कहानी है एक पिंड की कुड़ी गीता की, जिसकी शादी मुंबई के एक इंजीनियर नाल तय होने वाली होंदी है। तो बस फिर गीता का पिता जड़े ने वो एक इंजीनियर ने तो उन्होंने लैन वास्ते स्टेशन जाते हैं, पर गलत फहमी होंदी है तो वह किसी होर नू इंजीनियर समझ के घर ले आंदे आ। ते बस इहदे हसांदी है फिल्म ते आखिर दे विच पर्दाफाश हुंदा है ते पिता जी नूं अहसास हुंदा है कि लै के किसी होर नूं आना सी, पर लै के किसी होर नूं ही जिहड़ा है आ गए ने। ते बहुत खूबसूरत कॉमेडी म्यूजिकल फिल्म है। ते इस दे नाल ही इस गीत दा, इस फिल्म दा जिहड़ा इक गीत पेश करन जा रही है यशुदास जी दी आवाज़ दे विच, ते इस तों बाद तुहाडे नाल सांझा करांगे इक खास पंजाबी सिनेमा दी शख्सियत बारे कुछ खास गल्लां बातां।

नमस्कार, FMN 102.7 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी जलंधर का ये रेनबो चैनल है। रात 8 बजे ने पेश है FM न्यूज हेडलाइंस। राष्ट्रीय महिला कमिशन NCW ने किनौने जिनसी अपराधों के मामलों में तेज मुकदमिया, मजबूत निगरानी और पैरोल उत्ते पाबंदी लाने की मांग की है। पंजाब कर विभाग ने एक संगठित फर्जी बिलिंग नेटवर्क का सफलता नाल पर्दाफाश करदिया लुधियाना की एक फर्म के डायरेक्टर नूं वड्डा GST घोटाला करन दे दोष विच गिरफ्तार किया है। पंजाब दे राजपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने अज पंजाब लोक भवन विखे विश्व रेड क्रॉस दिवस मौके कराए गए राज पदरी समागम की प्रधानगी की। पंजाब सरकार ने अज यूनिफाइड सैंक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करके माली शासन विच एक वड्डा मील पत्थर कायम किया। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की खुशी विच आकाशवाणी वालों देश भर समेत पंजाब विच ही भी अपने जलंधर ते पटियाला स्टेशनों ते पलके 9 मई नूं एक विशेष वाकथन का आयोजन किया जा रहा है।

वेलकम बैक है जी दोस्तों, प्रोग्राम सुन रहे हो दिल चाहता है। दोस्तों भी मैसेजेस साढ़े तक पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो एक एक करके सारे ही मैसेजेस नू प्रोग्राम विच शामिल जरूर करांगे। अगली नमस्कार सानू भेजी है जी चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी ने, तो फरमाइश है जी इन्हां दी जुगनू फिल्म का गीत गिर गया झुमका। लो जी झुमका, मैं क्या जी झुमका गिर गया गीत सुनांगे, पर इस नाल ही एक होर मैसेज आया है जी साढ़े तक सिरसा हरियाणा तो हिमांशु सेठी जी का। तो लो जी फिर इन्हां दोस्तां दी रली मिली पसंद सुनते हाँ किशोर ते लता जी की आवाज़ के एक

उत्तम नगर दिल्ली तो बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। द मैसेज आया जी। इस नाल ही नाल एक और मैसेज साढ़े तक, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो आया है मैसेज करने वाले ने, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, महराज जहां। मैगजी सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जैविर सिंह, डॉक्टर अमनदीप तेना दे साथी कालका तो मैसेज कर रहे ने, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा जी। दोस्तों नमस्कार लिखे सानू भेजी है नाई वाला।

एक खास सूचना दोस्तों, क्रिकेट का विशेष प्रोग्राम स्टंपर्ड सीजन 7वां फिर तो आ गया है। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ FM ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ 102.7 MHz 'ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ।

जो कि सानू भेजिया है बत्ता परिवार ने। मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश जी का मैसेज। उस तो बाद रिंगनी छत्तीसगढ़ तो फरमाइश करता ने दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। फरमाइश है जी इन्हों की फिल्म सरगम का कहते गीत सुना दिता जाए रफी जी की आवाज। बिल्कुल जी, गीत तो असी सुनांगे ही, प्रोग्राम का नाम ही है दिल चाहता है, तुहाडा दिल जिहड़े गीत सुनन नू करेगा। पर नाल ही नाल मैसेजेस नू भी शामिल करते जाने हाँ ताकि कोई दोस्त रह ना जाए। सादुल शहर राजस्थान तो राम कुमार रिवाड़ चंद्रकला का मैसेज आया है। एक होर मैसेज आया जी मेरठ कैंट तो दिग्दर्शन ते कविता गौड़ दा। करणवीर हाउस पुचों कैंचियां बठिंडा पंजाब तो नमस्कार लिख के भेजी है प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन ते अभिजोत ने। ते लिखते ने किसी भी गीत विच शामिल कर लिया जाए। तो लो जी फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद ते सुनते हाँ सरगम फिल्म का एक गीत।

जी, प्रोग्राम सुन रहे हो दिल चाहता है। वाह, किशोर कुमार दी विच तुसी गीत सुनिया फिल्म सौतन तो। ते मैं जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है ते बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश आई है ते पूरी कोशिश करांगे ज़्यादा तो ज़्यादा फरमाइशां पूरियां करन दी, पर समय दी नज़ाकत दे तहत तुहाडे नाम जरूर प्रोग्राम विच शामिल किते जाणगे जेकर गीत ना शामिल किया गया। अगला मैसेज दोस्तों साढ़े तक पहुंचया है नोहर राजस्थान तो, नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु जी का। फाजिल का तो मैसेज भेजा है विनोद काठपाल, परवीन, दीक्षा, जन्नत। ते इना दी फरमाइश है जी, कहिंदे प्रेम रोग फिल्म दा कोई भी गीत जड़ा है सुना दिता जाए। बिल्कुल जी, गीत तो असीं सुनांगे इस फिल्म दा, पर कुछ मैसेजेस होर भी शामिल करन जा रही हैं। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र तो यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल, कोमल, शुभम, प्रियंका, आंचल, कुंज, पर्व, प्रवीण धीमान, चिराग, रजत, राजेश जी का मैसेज आया है। किसी भी गीत विच शामिल करने वास्ते कहा गया है। तो एक होर मैसेज पहुँच रहा है साढ़े तक, जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, उन्हां दे चाचा चाची, पूरा मुलाना परिवार मैसेज कर रहा है। पदमपुर तो मैसेज आया है जी। इस तों बाद अगला मैसेज आया है जी, पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश तो, जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी, रवि गर्ग, शिमला तो मैसेज आया जी, नीतू गोयल, विकास गोयल, शिल्पा गर्ग जी का। बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने दोस्तों का। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा तो, रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जय प्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, तो गुरशब्द सिंह राहुल का भी आया मैसेज। तो लो जी, फिर इन्हों दोस्तों सारे दोस्तों की रली मिली पसंद से सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग का ये गीत।

दोस्तों प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच महज 11 मिनट बाकी है, पर इस समय दरमियान तुहाडे मैसेजेस तुहाडे नाम प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल किए जाएंगे। तो जी मैसेज आया है सानू अगला, सत श्री अकाल लिख के भेज रहे ने काला कंबोज रजनी बाला सीरत जपजी ते गुरफते सिंह। इस नाल ही मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका का भी मैसेज है श्री गंगानगर तो। राजेंद्र जोड़ा गुलजार सिंह बस्ती शेख जलंधर तो मैसेज लिख रहे ने, लिखते ने नदिया के पार फिल्म का गीत सुना दिता जाए, बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी बिल्कुल जी, प्रोग्राम विच जुड़े हो, मैसेज आया गीत सुनांगे असी। पर बाकी दोस्त जिन्हां दे मैसेजेस पहुंचे हैं जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकैस्ट्रो रोजी पर्ल ते विलिस डिकैस्ट्रो दा भी आया मैसेज। ते नाल ही नाल एक होर नमस्ते साढ़े तक पहुंची है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र तो टी एस निर्मला नवाकर विशाल मलकापुर तो नारायण इंगले मंगला ते आशीष मुहर करता पिंड ते डाकाना निमानाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत ते करमजीत कौर का भी आया जी मैसेज, लिखते ने शामिल कर लिता जाए प्रोग्राम विच। बहुत बहुत शुक्रिया जी सारे दोस्तों का। तो लो जी फिर इन्हां दी पसंद ते सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत हेमलता ते यशपाल जसपाल सिंह की आवाज़ के।

0: नहीं, जो लाइफस्टाइल में कई बहुत थोड़ी है।
1: तुम जिद तो कर रहे हो,
0: क्यों बजा रहे हो? आगे बढ़ रहे हैं फिर।

प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, सुन रहे हो उसे। नगमा यानी कि एक रही चीज जो बेश कीमती हुए वो मूल्य हुए। प्यार भी रही ही चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है, हर एक कीमत तो परे है। प्यार जिसनु मोहब्बत भी कह देने, इश्क भी कह देने, प्रेम भी कह देने, तो इस प्यार प्रेम इश्क नु अलग अलग चीज़ों के नाल असी नापते तोलते हैं। इस ते ही किसी शायर ने लिखा है, प्यार तो है मगर इजहार का हौसला नहीं, न जाने जब हौसला आए तो इस प्यार का क्या अंजाम हो।

इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुस्वा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं।

एक एक लम्हा गुजारा जा रहा है, एक एक लम्हा गुजारा जा रहा है होश में, ए जड़े किस्मत जो है तूफान की आगोश में, अब ये आलम है हमारा बंदगी के जोश में, एक सजदा बेखुदी में, एक सजदा होश में।

सुनो, जरा जल्दी मिला करो। हाँ, जरा जल्दी मिला करो, क्योंकि बहुत सारी शिकवे शिकायतें इकट्ठी रहती हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए होती हैं, इसलिए जल्दी मिला करो। चलो, अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते, तुम हमारे क्या हो हम ये समझाने कहाँ जाते। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, सुन रही हो तुसी अपने दोस्त आरजे निहारल दे नाल। प्रोग्राम दा अगला गीत पेश करन जा रहे हैं, आवाज़ लता मंगेशकर दी।

0: प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, हुन उस मंजर ते पहुंच गया है जिथे समा है तुहाडे तो इजाजत लैण दा, पर इस विश्वास नाल कि जल्द मिलांगे, फिर मिलांगे। ते जांदे जांदे कुछ लाइना तुहाडे वास्ते, फिर चाहे जितनी कामत लेकर आ जाना, फिर चाहे जितनी कामत लेकर आ जाना, पहले अपनी जात से तुम बाहर आ जाना। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, दानंद मानिया तुसी अपने दोस्त आरजे निहारलन दे नाल। खुशगवार हाँ इस रात वास्ते, सारे ही दोस्तां दे प्यार वास्ते। जल्द मिलांगे, बहुत सारे प्रोग्राम तक खजाना लैके तुहाडे वास्ते। तद तक मैनू अपने दोस्त आरजे निहारलन नू दिओ इजाजत, ते प्रोग्राम दा आखरी गीत आवाज़ मुकेश दी तुहाडे पेशे खिदमत है।
1: मैंने

राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान।